अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: है, बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा
2: बस चल

0: कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय, लिख के दूं क्या?
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: मैं तो पूछ रही हूँ, बताइए क्या हालचाल है, कैसा गया कल का दिन और आज क्या प्लान्स है, अभी क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उठ चुके हैं या फिर बस अभी अभी आँख खुली है, और व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे, ऑफिस जाना है, सब बढ़िया है, सब जानना चाहती हूँ डिटेल में 3311106 पर. क्या मस्त गा रहा है यार.
1: अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी.
0: अब इसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ. ये इवेंचुअली हम सब कहते हैं ना. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ 3311106 पर. गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग हो जाए मेरी जान. ऑलरेडी कुछ मैसेजेस तो आ गए हैं, थोड़े बहुत और आ जाएं तो दिल खुश हो जाएगा.

0: छोरे मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में खैरियत, ब्यूटीफुल ट्रैक, बड़ा ही सुंदर गाना, क्या खूबसूरत लिरिक्स, और अरिजीत सिंह तो चार चांद लगा ही देते हैं हर गाने में। यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, एंड गुड मॉर्निंग मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। सो सबसे पहले वंस अगेन वी हैव नाज़नी जी, एंड यार इन्होंने मुझे 254 पे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया था। यार नाज़नी जी कितनी जल्दी उठती हो आप। So the message is, every sunrise is a gentle reminder that anything is possible. Wake up with hope in your heart. And that is such a beautiful message to start your day with. Har din ek nayi shuruaat hai. Kal kya hua usko kal pe chhod do yaar. Aaj usko carry forward karke lane ki zarurat nahi hoti hai meri jaan. Then Abrar ji ne good morning bheja hai. Shashikant Patil ji ka message aaya hai. One of the best feelings in the world is knowing that someone is happy because of you. Yes. And when I say ki aapki messages mujhe happy kar dete hain, that's what I meant, you know. And I hope ki mere gaane aapko happy kar rahe hain. Aur Sandhu ji ka bhi good morning aa gaya ji. Have a blessed day. Harpal Sandhu from Dukhan Zikrit. Jio Bindas. Good morning to everybody. And are aise kaise? Aise wala good morning nahi chalega bhai. Yahi chahiye hamein.
1: Good morning, pineapple.
0: Hey, hey.
1: Looking very good, very nice. Good morning, pineapple. Very good, very nice.
0: A very good morning to all the pineapples out there. It's just a, you know, lovey-dovey name. ऐसे मैं आपको pineapple नहीं बुला रही हूँ, आप समझ रहे हो ना बात को, feelings को समझो यार, words पे नहीं जाने गए। आप बताएं कि कैसे हैं, what's the plan for the day? 3311106 पर message कीजिए और मैं भेज रही हूँ cool song of the hour for you. Stay tuned on Radio Bindaas.
2: Cool song.
3: Radio Olive पर आने वाला गाना cool song of the hour.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: Adnan Sami ki awaaz mein Life in a Metro se baatein kuch ankahin se beautiful track. And I think ki hum sab ki life mein, and not just one person, lot of people, you know, jinse ya to ab baat nahi hoti hai, distance grow ho gaya hai, kuch na kuch baatein ankahin se reh hi jaati hai kahin na kahin, hai na? Tanisha ke saath hai, Radio on 106.3 FM par Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par, isliye kehti rehti hu waqt hai to जो भी बात करनी है बिंदास आके कर लो, ठीक है? बाद में ये मलाल ना रह जाए ना कि बातें रह गई कुछ करने के लिए. सो 3311063 इज द नंबर. और यहाँ अर्श का भी गुड मॉर्निंग आ चुका है. मॉर्निंग सन एंड स्काइज ऑफ ब्लू, विशिंग अ वंडरफुल डे टू यू, विशिंग यू द सेम, थैंक यू सो मच. एंड यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट और उसमें एक बहुत खूबसूरत एडवाइस दी. देयर वाज दिस प्रोफेसर, शी वाज टॉकिंग टू द पॉडकास्टर एंड उसने पूछा कि व्हाट इज द वन बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव आउट टू पीपल और यू हैव रिसीव्ड. सो शी सेड, अ विनर इज जस्ट अ लूजर. So I never stop at failure. And that has so much depth and so much weight. Kyunki I do not feel there is anything as such failure. It's just you're growing, you're learning. Agar aap kisi cheez ko try kar rahe hain, like apne kisi cheez mein efforts dale hain and it didn't work out well, par aapne kuch seekha na usse, to jo galti is baar hui, jab aap dobara se try karenge, wo galti aap nahi karenge. And eventually it will lead to your success. You will win eventually. Maybe kabhi kabhi waqt lag jata hai, par efforts dalne nahi chhodne chahiye, theek hai? Bas yehi bolna chah rahi thi. Sending an amazing track your way with Narayan aur Alka Yagnik ki awaaz mein. Agar main kahun mujhe tumse mohabbat hai, to kya kahoge batao? Stay tuned and Jio Bindaas.

0: 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में रन मूवी से दिल में जो बात है कह दो, बिल्कुल कह दो यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। मुझे जसा जी और अशरफ जी का भी गुड मॉर्निंग आया, तो गुड मॉर्निंग टू यू टू जी। और वक्त हो चुका है
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
1: ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का आज का सवाल है कि कौन सा फ्रूट जो है वो लव एप्पल कहा जाता है। लाइक एक फ्रूट है जिसका नाम लव एप्पल भी है, कौन सा है वो, उसका नाम आपने मुझे बताना है 3311-1063 पर, या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर। विच फ्रूट इज कॉल्ड द लव एप्पल? यस, उसका नाम लव एप्पल है एंड इट इज अ फ्रूट एंड वी मोस्टली कंफ्यूज इट विद वेजिटेबल। अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूँ, सोचो जरा और बताओ। इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज का। फिलहाल भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है। चुनरी चुनरी स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान।

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग आरज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Denisha. Denisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Denisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. बैड न्यूज से तौबा तौबा सुना आपने.
2: Radio Olive presents Black Boat Stories.
1: सो ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का मेरा आज का सवाल था कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसे लव एप्पल भी कहा जाता है एंड वी मोस्टली कन्फ्यूज इट विद बीइंग अ वेजिटेबल एंड आई हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर. सो मुझे दीपक का मैसेज आया है, अंजलि का मैसेज आया है एंड देन वी हैव प्रीति और उस्मान, अर्श का मैसेज आया है, साद का भी मैसेज है एंड अ फ्यू मोर मैसेजेस आर ओवर देयर और सबने सही जवाब दिया है जी. कमाल ही हो गए हैं. सो टमेटो, जी टमाटर का दूसरा नाम लव एप्पल है एंड बेसिकली इसका जो फ्रेंच नेम है इट इज पोम दमोर विच ट्रांसलेट्स टू लव एप्पल. एंड यूरोप में जब एप्पल टमेटो पहली बार आया था, लव एप्पल पहली बार आया था तो पीपल बिलीव्ड कि यू नो इट कैन मेक यू मेक द अदर पर्सन फॉल इन लव विद यू सम हाउ. उसमें ऐसी कुछ तो मैजिकल पावर्स हैं तो वो ये कर सकता है एंड दैट्स हाउ इट गॉट द निकनेम लव एप्पल. एंड या हम यूजुअली काफ़ी टाइम तक एक्चुअली स्कूल में पढ़ा होगा डेफिनेटली पर ध्यान तो दिया नहीं था ना पढ़ाई में ज़्यादा तो मुझे ये चीज़ रियलाइज नहीं हुई थी कि टमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट नॉट अ वेजिटेबल. ध्यान तो हमेशा से गानों में ही था मेरी जान.
3: जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे कहने.
1: इसकी वो वायरल इंस्टाग्राम वाली लाइन जो है आपके दिमाग में आ चुकी होगी, साथ में गाएंगे जब चलेगा. परफेक्ट बात है, देना ही नहीं है. ओए क्या कमाल गाने लाइन पे यार. इस घंटे में भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने सुनने हैं, आपके मैसेजेस भी पढ़ने हैं. सो नंबर याद दिला देती हूँ 3311 1063 पर. बाय द वे मौसम का क्या हाल है बाहर जरा बताओ, लौट कर आती हूँ फिर हम मौसम की भी बात करने वाले हैं. फिलहाल भेज रही हूँ अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में कॉकटेल 2 से तुझको. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुलु हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में।
1: लुलु, where the world comes to shop.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
5: नीना गुप्ता,
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
6: ओलिव सुनो रेडियो।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: दिल धड़कने दो मूवी से कमाल का गाना गल्ला गुड़िया ऑल ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है मौसम की बात करने का. What is to like about this weather? मतलब it says 33 degrees but feels like 42. ये कोई sense बन रही है इस बात की, आप मुझे समझाओ. 33 है तो 33 feel होना चाहिए ना, 42 का क्या मतलब है? किया ना हमने वो फील, हो गया ना बस यार. Now I want my winters back. I mean, what a pleasant and beautiful weather. कब आएगा वो मैं इंतज़ार कर रही हूँ. लेकिन उस इंतज़ार में मुझे आपसे कुछ पूछना था. वो ये था कि इमेजिन करो अगर आपकी कार आपसे बात कर पाती तो वो प्रॉब्ली आपको क्या बोलती. बॉस फ्यूल भरवा देते हो पर सर्विस कब करवाओगे. एग्जैक्टली, क्योंकि हम टालते रहते हैं, यू नो, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ऑल, आलस. यस, वी ऑल डू दैट. बट दिस इज योर रिमाइंडर. चेक कीजिए इफ योर कार नीड्स सर्विस, यू शुड विजिट वाल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस एट सलवा रोड. वहाँ पे आपको 150 ईयर्स का ट्रस्ट मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स, प्रीमियम फिल्टर्स. और आपकी कार की जितनी भी सर्विसेज हो चुकी हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना वो रिकॉर्ड एंड ऐसे फिजिकली जब आपको भरना होता है तो आदत तो रही नहीं है हमें कुछ भी लिखने की. सो यू विल गेट अ स्मार्ट डिजिटल कार पासपोर्ट जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि लास्ट टाइम कब क्या करवाया था, कौन सी सर्विस कब हुई थी, कौन सी मिस कर दी है, कौन सी करवानी है आगे, एवरीथिंग. सो सब चीज़ें सॉर्टेड हैं. बस आपने एक नंबर जो है मैं बता रही हूँ आपको, आप इसे नोट कीजिए, इस पर कॉल कीजिए. 7765595 7765595 4. यहाँ कॉल कीजिए, बताइए कि तनिषा ने बोला है कि आपको कॉल करके मैं पूछूं कि मेरी कार के लिए स्पेशल क्या होने वाला है. वाल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस सलवा रोड पे चेकआउट कीजिए और मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा है. और सुनते रहिए रेडियो ऑल इज सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे जियो बिंदास मेरी जान.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

फ्लैश मूवी से हेमा सरदेसाई और शाहरुख खान की आवाज में ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं अब। सो राइट नाउ बात करते हैं कि कतर में क्या हो रहा है, और जो मैं बोलने वाली हूँ ना बिल्कुल भी फेक नहीं रही हूँ, एकदम सच्ची बात बोल रही हूँ। सो कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल 2027 के लिए जो वेंडर रजिस्टर करना चाहते हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट, उसके लिए जो कॉल है वो आ चुका है। इट इज़ ओपन नाउ, यू कैन गो और यू कैन टेल पीपल हु वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, दे कैन गो ऑन कतर टूरिज्म्स वेबसाइट, वहाँ पे बिजनेस और इवेंट्स वाले में ऑप्शन में जाकर दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स टू बी द वेंडर फॉर कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल। ये होने वाला है 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक 2027 में, और टाइमिंग इसका होने वाला है पूरा दिन चलने वाला है बाबा, स्ट्रेस लेने का, चिल मारने का एकदम। और लुसेल स्टेडियम में होगा ये। टिकट्स वगैरह नहीं लगती है इसके लिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, बट राइट नाउ इट इज़ अ कॉल फॉर द वेंडर्स, सो हू एवर वॉन्टेड यू नो इस बार नहीं कर पाए, सो नेक्स्ट टाइम के लिए ऑलरेडी कॉल ओपन हो चुका है। यू कैन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड गुड लक मेरी जान। सेंडिंग है एक बहुत ही कमाल का गाना, ये आप भी खुद को डेडिकेट कर लो और मैं भी खुद को डेडिकेट कर लेती हूँ, ठीक है? Stay tuned and Jio Bindaas.

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: मैं हूँ सारिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

Niti Mohan ke baaz mein Gangu Bhai Kathiawadi se meri jaan only on Radio 11.3 FM Tanisha ke saath Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par and we have used this phrase and we have heard this phrase a lot pulling your leg or pulling someone's leg jab bhi koi aapse mazak kar raha hota hai ya fir koi aisi cheez bol dete hai you know like pranking or something us tarike se ya fir cover up kar rahe hote to kehte hain are I'm just pulling your leg yaar pata hai ye phrase kahan se aaya So basically, late 1800s में यूरोप में ये चोरों का तरीका था कि यू नो किसी इंसान का पैर खींच के उसे गिरा दिया जाए और फिर दूसरा वाला आता है एंड वो वॉलेट और वॉच जो भी हाथ लग रहा है वो रॉब करके चला जाता है दैट्स वेयर दिस पुलिंग द लेग फ्रेज कम्स फ्रॉम एंड इवेंचुअली वहाँ वो वाली डिसीविंग से इट केम डाउन टू दिस यू नो मेकिंग फन किसी को ऐसे ह्यूमरसली परेशान करना प्रैंक करना उन सब चीजों के लिए यूज होने लग गया जी हाँ दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम इट इज वेरी इंटरेस्टिंग यू नो इंग्लिश की कुछ चीजें इनफैक्ट हिंदी के भी कुछ प्रोवर्ब्स कहां से निकल कर आए हैं वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड दैट धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे हाँ जी फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं स्ट्रीट यू नंद जी बिंदास

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: பாட்டுதான்
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
3: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

Alicia. Alicia. केदरी जी से शाबाश शाबाश फुल सेलिब्रेशन हुआ है यहाँ अभी स्टूडियो में. किस बात का हूँ मैं बताती हूँ. यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑल एम 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और भाई सेलिब्रेशन हो रहा था मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने का. यस, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है. और साथ में ये उनका कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड गोल्ड मेडल है और इस बार के कॉमनवेल्थ का पहला इंडिया का गोल्ड मेडल है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. वो कहते हैं ना, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, कोई किसी से कम नहीं है. एंड यू नो इट्स ऑल हर हार्ड वर्क एंड शी हैज़ बीन यू नो एट इट फुल ऑन. वो पूरे साल लगी रहती है इसमें एंड इट्स जस्ट द फ्रूट ऑफ हर एफर्ट्स यार. यस, सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू हर एंड टू इंडिया एज वेल. और फोर्थ डे था ये कॉमनवेल्थ गेम्स का एंड सो फार इंडिया का जो मेडल टैली है वो है 3. हर कैटेगरी में एक मेडल मिल चुका है, दैट इज 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज. आगे देखते हैं और क्या क्या होता है. फिलहाल तो सेलिब्रेशन चल रहा है और इसी बात पर भेज रही हूँ मैं शान की आवाज़ में रश मूवी से चुप चुप के. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास. आगे आके ना जापान के बारे में एक बड़ी ही अतरंगी सी चीज़ बतानी है मैंने, तो कहीं जाइएगा नहीं. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: Presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

Arijit Singh ki awaaz mein Brahmastra se Kesari Ali on Radio 106.3 FM Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur waqt ho chuka hai Wacky Wisdom mein aaj hum baat karenge Japan ke human refrigerator ki ji haan इंसानों के लिए फ्रिज नो नॉट टू स्टोर द बॉडीज और एनीथिंग यार क्या सोचते हो यार इट इज़ जस्ट टू इट्स काइंड ऑफ अ वॉक इन पर्सनल कूलिंग बूथ सो आप उसमें जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो रही है बाहर तो आप उसमें जाएं और आप ऐसे 5-10 मिनट वहाँ बैठे एंड इट विल यू नो रिड्यूस द टेम्परेचर वो जो हीट स्ट्रेस है वो कम कर देगा बॉडी को कूल कर देगा इंस्टेंटली येस सो राइट नाउ जापान काफ़ी वक्त से ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज से जूझ रहा है बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पे सो दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ अ कूलिंग बूथ फॉर पीपल हु आर वर्किंग आउटसाइड यू नो लाइक फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फैक्ट्री वर्कर्स वेयरहाउस स्टाफ रोड क्रूज आउटडोर इवेंट वर्कर्स इन सब के लिए दे केम अप विद दिस आइडिया सो इट्स काइंड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बूथ आप वहाँ पर जाके बैठे उसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्रीज पे ऐसे मेंटेन रहता है लेकिन आपके हेड नेक शोल्डर और बैक पे बहुत ही ठंडी हवा वो ऐसे फेंकता है सो उससे ना आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इट कम्स बैक टू नॉर्मल कूल हो जाता है वापस और 5-10 मिनट लगते हैं एंड देन यू आर बैक टू वर्क यू नो यू कैन गो एंड नॉर्मली आप काम कर सकते हैं वहाँ पे और इट ऑटोमेटिकली शट्स ऑफ आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स टू प्रिवेंट ओवर कूलिंग क्योंकि वो भी प्रॉब्लम है इतनी गर्मी से एकदम भयंकर ठंडे में ज़्यादा देर तक बैठ जाओगे तो दैट विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम सो इट्स एन अमेजिंग आइडिया आई फील और ये अतरंगी चीज़ें करने में जापान का तो भाई कोई जवाब नहीं है इतने क्रेजी क्रेजी इन्वेंशंस लेकर आते हैं एंड लाइक ये सोच कैसे रहे हैं ये सब But yeah, there are a lot more which we are going to discuss abhi coming days mein. So don't worry about that. Filhal sending fresh song of the hour for you. Stay tuned and Jio Bindaas. Radio on.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
2: लुनो, where the world comes to shop.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तनिषा
1: परम सुंदरी से डेंजर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और मुझे बताओ बर्थडेज याद रहते हैं ना एनिवर्सरीज भी याद रहती है हमारा पार्टनर का फेवरेट कॉफी ऑर्डर क्या है वो तक याद रहता है पर क्या ये याद है कि लास्ट टाइम अपनी कार की सर्विस कब करवाई थी अगर नहीं तो इट इज योर साइन टू राइट अवे विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड क्यों क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी प्रीमियम केयर यार कार इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुछ लोगों के लिए तो वो फैमिली का हिस्सा होती है जान होती है तो उसकी केयर और उसके बारे में सब चीज़ें याद रखना और यू नो संभाल के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो प्रीमियम केयर तो वो डिजर्व करती है देन यू विल ऑल्सो गेट जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट ओवर देयर अलॉन्ग विथ प्रीमियम फिल्टर्स और डिजिटल कार पासपोर्ट सो दैट आपकी कार की कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री उसमें स्टोर रहे और इजिली एक्सेसिबल रहे आपके लिए सो फटाफट नंबर नोट करो मैं बता रही हूँ 7765 5954 7765 5954 इस नंबर पे कॉल करने का और बोलने का कि तनिषा ने बोला तो कॉल करने के लिए मेरी कार को चाहिए प्रीमियम केयर सो व्हाट आर दी ऑफर्स फॉर मी कॉल कीजिए और पता कीजिए और फिलहाल सुनते हैं कमाल का गाना से मजर की आवाज में स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास मेरी जान

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: आशा, सुरेश वाडेकर साहब और आशा ताई की आवाज में सत्या मूवी से बड़ा ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. पिछला कुछ अपडेट लेकर आए थे इंस्टाग्राम, तो मैंने कहा था कि चलो फाइनली कोई काम का अपडेट लेकर आए हैं, एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक माय वर्ड्स बैक बिकॉज दे आर बैक एट इट bringing silly, stupid, useless updates. Yes. So, जल्दी Instagram पे ये update आने वाला है कि वो जो reels का icon हमें नीचे जो I don't know what do we call that हमारी feed पे जो bar होता है जहाँ पे एक home का option होता है, एक reel का option होता है, एक DM का option होता है और एक हमारी profile पे जाने का option होता है, वहाँ से ना reel का option हट रहा है. क्योंकि अब आप जब Instagram खोलेंगे तो सीधा आपकी फीड पर रील्स ही आएंगी, आपको नॉर्मल फीड विद पिक्चर्स एंड योर फ्रेंड्स पोस्ट एंड ऑल द दोज वो चीज़ें नहीं दिखेगी. उसके लिए आपको अलग से एक ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आप आपकी फीड पर जा सकते हैं. क्यों कर रहे हैं ये सब? उन्हें पता है अच्छे से कि हमारे अटेंशन स्पैन की उन्होंने बैंड बजा दी ऑलरेडी, और आप एक बार रील देखना शुरू करो ना, फिर तो भाई 2 घंटे कहाँ जाते किसी को नहीं पता चलता. अटक जाते हैं और जो ब्रेन रॉट कंज्यूम करते हैं हम, चाहते ना चाहते, ना चाहते तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम बैठे ही होते हैं वेरी कॉन्शियसली, यू नो, डूम स्क्रॉल करते हुए देखते जा रहे हैं एक के बाद एक, ऑल दीज कुचू पुचू, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, और वो दिमाग में भर चुका है एंड वो एवरीडे कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन गया है. एंड नाउ इमेजिन कि आप किसी काम के लिए इंस्टाग्राम खोल रहे हो और लाइक किसी को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करना है या फिर कुछ चीज़ देखनी है, रील्स खुल गई हैं डायरेक्टली, अटक गए हो आप. काम तो रहेगा ना आपका, कोई सेंस है इस अपडेट का? बताओ मुझे. बाय द वे, अगर ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी आ चुका है तो ज़रा बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि कुछ फ़ोन्स में आया है और कुछ में अभी आना बाकी है. 3311106 इज़ द नंबर, यहाँ मैसेज कर सकते हैं आप. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

Tanisha. Crazy vibe hai is gaane ki. You're listening to Radio All Over 106.3 FM. Tanisha aapke saath. Bindaas mornings chal rahe hain yahan par. Aur yaad dilana chahti hoon ki agar abhi tak nahi kiya hai to kar lo. Theek hai? मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं प्यार से बोल रही हूँ मेरी जान, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं और आप मिस आउट कर जाओगे, ये मैं नहीं चाहती हूँ. सो फॉलो कर लो हमें सोशल मीडिया पे, radioall.qa इज दी हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, सब जगह आ जाओ, स्पैम कर दो, ठीक है. यूट्यूब, यस, एंड देन देर इज वॉइस कास्ट. अगर जो पॉडकास्ट हम यहाँ पर चला रहे होते हैं वो पॉडकास्ट आप वहाँ पर सुन सकते हैं. वॉइस कास्ट पे इट्स एन एप्लीकेशन, आप वो डाउनलोड कर लो या फिर वेबसाइट पे चले जाओ, वहां जाकर भी सुन सकते हो. और एडिशनल भी बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आपको मिलेंगे. एंड इफ somebody इज ट्रैवलिंग तो उन्हें बता दो कि दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें लाइव सुन सकते हैं, तो ऐसे स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है. वी हैव एन ऐप, ऐप को डाउनलोड कीजिए और जहां भी हैं अपने ट्रैवल में हमें साथ साथ लेकर चलिए. और बिंदास रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि बढ़िया गाने भेज रही हूँ जी.

0: माँ, मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

गाने का नाम सुनो जरा और 90s के बॉलीवुड वाले अमेजिंग गाने से जो है आज के शो की शुरुआत कर रहे हैं हम. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर. मैं हूँ आपकी कसर, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. तो जी देखिए, आ गए हैं हम अपना डोपामीन कलर पहनकर, मतलब पिंक कलर पहनकर, एकदम प्रिटी प्रिटी वाइब लेकर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के दिन को थोड़ा और मस्त बनाने के लिए, आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए. अब देखिए, आज के शो में ना ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है. आपको कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं बताने वाली हूँ. कतर एयरवेज के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ, आपकी कार की हेल्थ के बारे में कुछ टेक की बात करेंगे, बहुत सारी फैशन की बातें करेंगे एंड बॉलीवुड की गॉसिप की बात भी करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ी सी देर बाद. फिलहाल जो है अमेजिंग गाने मैं आपके लिए लगा चुकी हूँ, तो ये गाने एंजॉय करो. और आज के शाइनी शाइनी दिन पर जगमग जगमग झील मिल ये वाला जो गाना है इससे शुरुआत करते हैं. सो आपकी कशिश जो है वो आपके साथ रहने वाली है अब 3 घंटे यहीं पर. तो जल्दी जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए 3311063 पर जो है मैसेज करके मुझे गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, या आपका आज का दिन जो है वो कैसा प्लान किया है आपने ये बता दीजिए. बाकी आज सुबह सुबह उठ के कुछ अगर कुछ खास हुआ है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. तो फिलहाल जल्दी से जो है अपना फ़ोन उठाइए, मैसेज कीजिए 3311063 पर, मुझे वेलकम कीजिए एंड फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना है आपके रेडियो सेट्स पर. हाँ जी, गाने का नाम जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल ही है. सो इस गाने को एंजॉय करके आओ जल्दी से एंड उसके बाद जो है हम बातचीत जारी रखेंगे. मैं हूँ आपकी कशिश, शो का नाम लाइफ मस्त है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check. Time check.
2: Brought to you by
1: Nanatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13. दैट इज 10:13. स्टे ट्यून रहिए जियो बिंदास.
4: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
5: अरमान मलिक
6: नंबर
4: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: मूवी का नाम भूत पुलिस और गाने का नाम मुझे प्यार प्यार है। अब देखिए, एक बार आप प्यार बोलते तो भी चल जाता कि मुझे प्यार है, लेकिन दो बार क्यों बोला? डबल प्यार है क्या आपको? क्यों प्यार प्यार बोला आपने? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सही भी है, अगर सिर्फ गाने का नाम होता मुझे प्यार है तो फिर लोग वो वाला गाना समझते ना, हाँ मुझे प्यार है या। ठीक है, नहीं गाऊंगी यार, इतना क्या परेशान हो रहे हो। वेलकम टू 106.3 रेडियो एलएफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हमारी कोशिश जो है वो जारी है। अब देखिए, वक्त हो गया है आपसे जो है मौसम की बात करने का। अब मौसम जो है वो तो गर्मा गर्म हो रहा है, सो बस एक बार और आपको टेम्परेचर बता देती हूँ, ज़्यादा फर्क हो नहीं रहा है अभी वैसे टेम्परेचर में। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एकदम गर्मा गर्म मजा आ जाएगा, ह्यूमिडिटी भी बहुत होगी। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि बहुत सारा पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सकता है जब तक बाहर धूप है अंदर रहने की जो है कोशिश करो, बस इतना ही कहूँगी मैं। बाकी आप लोगों ने जो है अपने कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो मुझे भेजे हैं, सो वो आपको बताना चाहती हूँ। मोहम्मद यूसुफ जी ने जो है वो लिखा है, हैप्पी मंडे मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एंड आप कैसे हैं? अब हम बात कर लेते हैं सरताज जी की। सरताज जी ने जो है वो मुझे कहा है, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? एंड मोहम्मद अतीक जी ने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा है, गुड मॉर्निंग। एंड मुझे दानिश शेख जी का जो है जस्ट अभी गुड मॉर्निंग आया है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एंड लियाकत जी ने भी जो है गुड मॉर्निंग कह दिया है। ओहो, मतलब आप लोगों का ऐसा है कि जब मैं मैसेजेस पढ़ूंगी आप लोग तभी मैसेज करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। चलो खैर, अगर आप लोगों को नंबर जो है अभी तक नहीं समझ आया है तो मैं वो बता देती हूँ, जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया है उन लोगों को जो है हम नंबर बता देते हैं, 3311063। यार मेरे नाम से सेव कर लो, बाकी यहाँ पर हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल जो है इस हीट को बीच करने के लिए एक कूल सॉन्ग तो देखो बनता है, इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे जो है इंजॉय कीजिए और आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

जो मेरे पल पल में शामिल है।

मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से प्यार और तेरे बिना, तेरे बिन, ये जो दो तीन शब्द हैं अगर इन्हें हटा दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे गाने जो है वो कम हो जाएंगे, आधी जो हमारी लाइब्रेरी है वो खाली हो जाएगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर बातचीत अपनी जारी रख रहे हैं। अब देखिए कोई और बात मैं आपको बताऊँ उससे पहले जो है मैं आप लोगों के मैसेजेस जो है वो पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो सबने गुड मॉर्निंग ही कहा है लेकिन हर एक को मेंशन किए बिना जो है मेरा मन कहाँ मानेगा। तो अस्मा जी ने भी कहा है गुड मॉर्निंग कशिश एंड साइमन जी ने भी हाय कहा है। हाय साइमन जी, कैसे हैं आप? उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया से जो है मोहम्मद खान जी ने जो है गुड मॉर्निंग कहा है। सो गुड मॉर्निंग जी, चलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हमें सुन रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट क्या हो सकती है। बाकी मोहम्मद यूसुफ जी ने भी कहा है आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बस देखिए ऐसे ही तो एक दूसरे का हाल चाल जो है वो पूछते पूछते दिन आगे बढ़ता है, शो जो है वो जो प्रोग्रेस करता है, अमेजिंग गाने जो है वो आपके रेडियो सेट्स पे आते हैं। वैसे प्रोग्रेस तो किसी और की लाइफ में भी हो रही है। हाँ जी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, इनकी जो है जब भी कुछ ऐसी खबर आती है तो मुझे लगता है कि वाओ अब तो सबको बताना पड़ेगा। सो बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह बोलने का मन कर रहा है, इतनी अच्छी खूबसूरत फोटो जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे आई और वो थी रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और उनकी बेटी दुआ की। हाँ जी, सो जो अपना फोटोशूट है मेटर्निटी फोटोशूट वो कराया है दीपिका पादुकोण ने एंड एक बहुत ही प्यारी सी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसके बाद लोगों ने दुआओं की लाइन लगा दी है एंड दुआ, बेबी दुआ कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। अगर आपने ये फोटो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लो 3311063 पर। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, टेबल नंबर 21 से। ये भी एक बहुत अच्छी मूवी है, मूवी रिकमेंडेशन में कभी इसको भी आपको रिकमेंड करूंगी, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करके आओ, उसके बाद जरा थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे कि आप अपना स्ट्रेस जो है हंसते गाते खेलते कूदते कैसे कम कर सकते हो। मैं हूं आपकी कशिश, मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
0: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

मेघना चैटर्जी जो की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिवर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। और हर रोज की तरह वक्त हो गया आपको ये बताने का कि यार स्ट्रेस से आप किस तरीके से लड़ सकते हैं। अब देखिए यार, मुझ जैसे मेजर लोगों का तो स्ट्रेस यही होता है कि यार लाइफस्टाइल काफी अनहेल्दी है और क्या कर सकते हैं, टाइम भी नहीं है, इंजॉय भी करना है और फिटनेस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। मतलब सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं तो वर्कआउट्स में जो है बैडमिंटन खेलने को जो है प्रायोरिटी दी गई है कि यार बैडमिंटन जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कार्डियो है, वर्कआउट है और इससे स्ट्रेस जो है वो कम होता है। सो अगर अब नेक्स्ट टाइम जो है स्ट्रेस हो और समझ ना आए कि क्या किया जाए तो बस बैडमिंटन रैकेट उठाना और खेलना शुरू कर देना। बाकी फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट्स पर कॉकटेल टू मूवी से, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: आप लोग 90s की फुल ऑन वाइब जो है वो हमने बरकरार करके रखी है यहाँ पे। मैं हूँ आपकी गजनी शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए यार, आज का जो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो ना जेंजीज के बारे में। मी बीइंग अ जेंजी, मैं जो है बहुत कंफ्यूज्ड रहती हूँ ऐसे जब टर्म्स जो है बाहर आ जाते हैं, जब ऐसी रिपोर्ट्स बाहर आती हैं। सो आपको जो है पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आज बता दूंगी। लिली पैडिंग नाम का एक शब्द है जो आजकल जेंजीज काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। लिली पैड बेसिकली होता है जो आप कमल का फूल देखते हैं जो कीचड़ में खिलता है, उसका जो पत्ती होती है उसको लिली पैड कहा जाता है। एंड लिली पैडिंग मतलब एक लिली पैड से दूसरे लिली पैड पे जंप मारना। अब इसको जो है आप लिटरली तो बिल्कुल मत समझिएगा कि ये कीचड़ के जो है एक पॉन्ड में आपको इस पे पत्तों से पत्तों पर जो है ऐसे छलांगे मारनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लिली पैडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि बिना ज्यादा एक्सपीरियंस लिए अपनी कंपनीज को या जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, उनको स्विच करते रहना। एंड जेंजीज के बीच में ये काफी फेमस जो है एक टर्मिनोलॉजी बनकर आ रही है, जहाँ पर मिलेनियल्स जो है वो ये सोचते हैं कि यार एक जगह पे एटलीस्ट एक साल या दो साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कंपनी से थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं, काम सीख लेते हैं, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर ही ग्रो करेंगे। वहीं पर जेंजीज का ये कहना होता है कि जैसे ही आपको लगे कि यार ये जगह हमारे लिए सही नहीं है या बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, वैसे ही स्विच कर लो। सो आपको क्या लगता है कि क्या जेंजीज की ये जो नई टर्मिनोलॉजी है ये सही है? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जो है आकर आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमें कुछ कुछ मैसेज किए हुए हैं। फिलहाल फिरोज जी ने जो है वो लिखा है कि हेलो जी कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा जी ने लिखा है यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। रमन जी ने जो है वो लिखा है गुड मॉर्निंग कशिश जी, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बस अब इस बारे में भी मैसेज कर दीजिए, 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पे आके बताइए कि लिली पैडिंग ये जो जेंजीज ने एक नया ट्रेंड जो है शुरू कर दिया है, जल्दी जल्दी अपना काम वर्क जॉब जो है वो स्विच करने का, क्या ये आपको सही लगता है? या मिलेनियल्स का जो तरीका था एक्सपीरियंस लेके फिर बेटर अपॉर्चुनिटी पे स्विच करना, वही सही है? बताइए आपको क्या लगता है। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

अगर लाइफ का कोई मतलब मंत्र बनाना है तो इस मूवी के नाम की तरह बनाना चाहिए, पॉपकॉर्न खाओ और मस्त हो जाओ। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है ले आई हूँ। एंड देखिए, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हम कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे कि यार ये जो जेंजीज हैं, मतलब मुझ जैसे जो जेंजीज हैं, इन्होंने एक टर्म को काफ़ी इस वक्त जो है हाइप करके रखा है, एंड दैट इज़ लिली पैडिंग, जहां पर आप अपनी जॉब्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो स्विच करते हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले आप एक्सपीरियंस का वेट नहीं करते हो, आपको बस लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना है तो हम निकल जाते हैं, जंप करते हैं। और रिसर्च जो है वो ये कहती है कि मैक्सिमम जेंजीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए जो है एक साल से ज़्यादा नहीं बिताते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जेंजीज, ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि एक साल होते ही जेंजीज जो है वो अपनी जॉब्स को स्विच कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज इसीलिए भी जो है काफ़ी जो है घबराई हुई रहती है जेंजीज को जो है जॉब ऑफर करने में, कि यार ये हमसे पूरा काम सीख लेंगे उसके बाद स्विच कर लेंगे। वही मिलेनियल्स का जो है ये सोचना होता है कि यार नहीं, हम टाइम देंगे और इसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेंगे। अब देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। जेंजीज जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी स्विच करके किसी एक कंपनी को अपना नहीं मानते हैं। लेकिन वही उसी हाथ पे जो है ये वाली चीज़ बेनिफिट कैसे कर दिया उन्हें कि इमोशनली अटैच नहीं होते हैं अपने काम से, एंड इन्हें नो बोलना आता है, तो जो इनका इन्वायरमेंट है वो टॉक्सिक नहीं होता है। वही मिलेनियल जो है किसी टॉक्सिक वर्क कल्चर वाली जगह पर भी अपना बेस्ट देते हैं एंड अपना क्रिएटिविटी को जो है वो गवा बैठते हैं, तो दोनों अपनी जगह ठीक है। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यार कशिश देखो, हम जो है अब जेंजीज से काफ़ी जेलस है, क्योंकि काश हमने भी सही टाइम पे इनकी तरह लिली पैडिंग कर दी होती तो अभी हमें जो है ऐसे रोना नहीं पड़ता। वैसे कोई बात नहीं, आप जो है इंजॉय कीजिए, खाना पीना खाइए। लव शव ते चिकन खुराना से अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ,
1: रेडियो
0: 106.3
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इस गाने से ना मुझे लॉन्ग ड्राइव की याद आ जाती है, क्योंकि पापा के साथ हर वीकेंड पर हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे। एंड कल जब मैंने अपने घर पे इंडिया में वीडियो कॉल लगाया ना, तब वो लोग तैयारी कर रहे थे जाने की। पापा जो है अपनी गाड़ी ही चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, टायर्स जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फ्यूल है या नहीं है। सो बस ऐसे चेकअप जो है गाड़ी में होते रहने चाहिए, ये तो मैंने अपने पापा से सीखा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को मस्त बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब लाइफ मस्त जो है वो एक लंबी ड्राइव के साथ होगी। वैसे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो एक गाड़ी ओन करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो सच्ची बात तो यही है कि हमें ना अपनी गाड़ी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब एक बात सच्ची सच्ची बताओ, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पैम्पर्ड योर कार? बताओ, अपने पार्टनर को तो आइसक्रीम खिलाने ले जाते हो उसी कार में बिठा के, लेकिन बेचारी कार का ध्यान ही नहीं रखते। हम अपनी गाड़ी को जो है रोज दौड़ाते हैं पर उसकी केयर करना जो है वो भूल जाते हैं। इट्स टाइम टू गिव योर कार द लव इट डिजर्व्स। स्ट्रेट अवे पहुंचो वेवलिन के AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस सलवा रोड पर। स्टैंडर्ड जो मेंटेनेंस है वो भी हो जाएगा और देखिए 150 इयर्स का ग्लोबल ट्रस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। यहाँ आपको जेन्युइन वेवलिन प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे, जैसे प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स और सबसे कूल चीज ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। इससे आपकी गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी। नो पेपर वर्क, नो स्ट्रेस। सो वेट मत करो, अपनी कार को प्रीमियम केयर दो। विजिट देम टुडे और आप जो है कॉल भी कर सकते हो 7765954 पे। नंबर नहीं लिखा है तो फिर से एक बार नोट कर लो 7765954 पर। तो यार देखो, लोगों के साथ साथ अपनी गाड़ी की केयर करो और बाकी अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते रहो। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को इंजॉय करो कॉकटेल टू मूवी से। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में फैशन के बारे में, फिर सारी गपशप जो है वो करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी का नाम था, ये आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ को थोड़े एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत अपनी कर रहे हैं। एंड वक्त हो गया है फैशन की बात करने का। मैं ना सुबह उठती ही ये सोच के हूँ कि आज जाके फैशन की ये वाली बात करूंगी, मतलब मेरे लाइफ का मोटिवेशन हो गया आप लोगों से फैशन की बात करना। एंड इस वक्त देखिए हम ना हेड टू टो सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अपने जूतों को कैसे भूल जाए। एंड जूते मतलब मैं हील्स की बात नहीं करने वाली हूँ, मैं आज कंफर्ट स्नीकर्स की बात करने वाली हूँ जिन्होंने फैशन का गेम इस वक्त बदल के रखा है। नहीं कोई महंगे स्नीकर्स नहीं, आप छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं बस शूज़ की लेस जो है वो बदल के। हाँ जी, शू लेस बदल के आप फुल ऑन गेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। आजकल इतनी क्वर्की जो है, इतनी अमेजिंग, इतनी यू नो डिफरेंटली ब्यूटीफुल लेस जो है, शू लेसेस जो है वो आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। लोग अलग अलग चीज़ों को जो है शू लेस की तरह बना के पहन रहे हैं। कल ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे मैंने देखा कि ईयरफोन जो होते हैं हमारे वायर्ड ईयरफोन, उससे लोगों ने लेस बनाई हुई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन क्रिएटिविटी अलग लेवल पे है। एंड अलग अलग जो है लोग अलग अलग टाइप की लेसेस जो है वो बना रहे हैं। सो अगर आप अपने पुराने स्नीकर्स को एक न्यू लुक देना चाहते हो, है ना, चाहते हो कि यार कुछ क्वर्की करना है, कुछ हटके करना है अपने आउटफिट में, तो आप बस उसकी लेस जो है वो चेंज कर दीजिए, फुल ऑन लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग गाना जो है वो हम सुन लेते हैं। धक धक रीलोडेड मावैन मूवी से ये गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। इसकी जो सिंगर है नुपुर खेडकर, उनसे भी हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे जो है बात करी है, बहुत फन इंटरव्यू है, आप जाकर उसको जो है रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हैं। मैंने जो है बहुत फन बातचीत करी है नूपुर से, सो जल्दी से जाकर ये गाना इंजॉय करो। और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी गोविंदा।

0: Trek. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 12:08. दैट इज 12:08. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर. द कूलेस्ट डील्स ऑन ज्वेलरी परचेसेस फॉर दिस समर आर हियर. फ्री कैश वाउचर्स ऑन योर डायमंड ज्वेलरी परचेसेस. 3.99% ऑनवर्ड्स अश्योर्ड लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस एंड 0% डिडक्शन ऑन ऑल गोल्ड एक्सचेंज एंड मच मोर ओनली एट जॉय अलुकास. प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? मेक इट इवन मोर रिवॉर्डिंग विद अप टू 15% सेविंग्स ऑन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन All jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.

0: आए हाय, कितना प्यारा सा ऐसे क्यूट सा गाना है ना, मजा आ गया था, वाइब्स ही आ जाती है गाने को सुन के। बहुत सारे लोगों ने तो सोच भी लिया होगा कि कशिश यार ये गाना अच्छा सुना दिया आपने, अब इसके बाद जो है हम इस पे स्टोरी लगाएंगे, लेकिन स्टोरी लगाओगे किसके लिए? देखिए यार, हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा पार्टनर जरूर होना चाहिए जिसके साथ वो फुल ऑन जो है अपने असली मोड में रह सके, प्रिटेंशियस ना रहना पड़े। और ऐसे ही जो है एक कपल की जो है खबर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक बहुत ही क्यूट एल्डरली कपल जो है वो मेरी फीड पे आया। उनकी उम्र जो है वो हो गई होगी कुछ 70 के आसपास, एंड वो ना एक ट्रेडिशनल लॉन्ड्री चलाते हैं, एंड वहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े जो है वो हर रोज़ धुलने के लिए आते हैं एंड वो धो भी देते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लॉन्ड्री जो है वो अनक्लेम्ड रह जाती है, यानी जिसे लेने कोई आता नहीं है, बहुत वक्त जो है वो बीत जाता है। सो ये जो कपल है ये उस लॉन्ड्री से जो है फैशन कर रहे हैं, यानी अलग अलग आधे अधूरे पीसेस जो इनके पास लॉन्ड्री में आते हैं जो कोई क्लेम नहीं करता है, ये उससे फैशन आइकन बन चुके हैं। एंड अब सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहे हैं क्योंकि ये जो है वो टूटे फूटे आधे अधूरे कपड़ों से जो है एक फुल ऑन लुक जो है वो क्रिएट कर देते हैं। बताइए यार, अगर पार्टनर हो तो ऐसा हो, वरना ऐसा ही हो, मतलब ढूंढ लीजिए। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो कोई ऐसा ही पार्टनर ढूंढिए जो आपकी हर चीज में आपका साथ देता हो एंड आपकी वाइब से जो है एकदम मैच करे, और फिर जब ऐसा कोई मिल जाए तो उसे आई लव यू कहने से जो है बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। फिलहाल अगर आप किसी को आई लव यू कहना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से अपना फोन उठाइए एंड मुझे नहीं उन्हें मैसेज करिए कि जल्दी से जो है रेडियो ऑलिव ट्यून इन करो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल वाला सॉन्ग जो है वो मैंने प्ले कराया है। मैं कह दूंगी कि आपने प्ले करवाया। सो अगला गाना ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है आपकी तरफ से। अगर आपको प्यार का इजहार करना है तो जल्दी से सबको बोलो, जिसको भी आप चाहते हो, कि यार जल्दी से रेडियो ऑन करो, रेडियो ऑलिव ट्यून इन करो एंड आपके लिए एक गाना जो है वो इस वक्त रेडियो पे प्ले हो रहा है। सो जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए। और बाकी अगर आपके पास कोई नहीं है मैसेज करने के लिए तो मुझे मैसेज कर दो, 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी देर में एक बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो है के लिए वो मैं आपको देने वाली हूँ, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिए। बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग
0: कोक स्टूडियो का गाना है, गाने का नाम है आई लव यू, अनप्लग्ड वर्जन है। सो जल्दी जल्दी से जिन जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया है मुझ पर ट्रस्ट करके, जल्दी से मैसेज कर दो अपने लव्ड वन को और ये गाना डेडिकेट कर दो। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

ऑफ कोर्स, क्या नाम देंगे यार इस प्यार को? देखिए, प्यार वो होता है जो किसी सीमा में नहीं बंधा होता है। प्यार जो है वो बस वो प्यार होता है। अब मैं जो है इंस्टाग्राम जैसे ही खोलती हूँ, वैसे ही कोई ना कोई लव स्टोरी जो है वो मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तो एक ऐसी लव स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करने के लिए आ चुकी हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत अपनी जारी रख रहे हैं। अब देखिए यार, लव स्टोरी को जिस तरीके की है, जो आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे कि एक लड़के ने अपनी जो है यू नो फियांसे के लिए उसके बर्थडे पे कुछ जो है सरप्राइज प्लान करना चाहा, लेकिन ये लोग जो थे लॉन्ग डिस्टेंस में थे, मतलब जो लड़का था वो किसी बाहर वाली कंट्री में था एंड लड़की जो थी वो इंडिया में थी। तो लड़के को यार ऐसा था कि यार सरप्राइज तो करना है, पर क्या किया जाए? तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है कि आप खुद उस इंसान के लिए प्रेजेंट हो जाओ। तो बस उस इंसान ने, उस लड़के ने बिना बताए जो है अपनी फ्लाइट बुक करी एंड फटाफट उसको सरप्राइज देने के लिए पहुंच गया। एंड ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है और इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना मुझे। लेकिन आप जो है ये सोच रहे हैं कि यार कशिश, हम तो ये नहीं कर सकते, फ्लाइट्स कितनी महंगी है। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं। कतर एयरवेज ने अपनी करंट प्रमोशनल ऑफर्स के बारे में जो है एक क्लैरिफिकेशन दी है और ये ऑफर्स जो है कतर्स के कस्टमर के लिए अवेलेबल है। हाँ जी, आपको प्रीमियम कैबिन्स में जो है अप टू 20% तक सेविंग मिलेगी, इकोनॉमी क्लास में अप टू 25% तक सेविंग मिलेगी, प्रिविलेज क्लब मेंबर्स के लिए सारे केबिन्स पर 50% बोनस एवियस है। देखिए यार, तो आपके ऑफर्स जो है ये 30th जुलाई 2026 से बुक कर सकते हैं और ये ट्रैवल के लिए अप टू 10th दिसंबर 2026 तक वैलिड है। सो इसमें देखिए थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी अप्लाई होती है। लेकिन देखिए प्यार में क्या टर्म क्या कंडीशन, जल्दी से जाइए और अपनी लव्ड वंस के पास अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर कतर एयरवेज में अपनी फ्लाइट बुक कर लीजिए। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना इंतजार कर रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो ये गाना इंजॉय करके आइए एंड उसके बाद बातचीत जो है हम जारी रखेंगे। मैं हूं आपकी कशिश, शो का नाम लाइफ मस्त है, स्टे ट्यून्ड रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कैसे जो है वक्त चला गया पता ही नहीं चला, वक्त हो गया यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का। सो देखिए, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं जो है यहाँ से जा रही हूँ आपको टाटा बाय बाय बोलकर। कल जो है सेम समय पर आऊंगी आपको एंटरटेन करने एंड आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने एंड एक पिंच ऑफ फन आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए। फिलहाल जाते जाते एक बहुत ही अमेजिंग गाना ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आपकी रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। और बाकी जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर मेरी याद सताए तो रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर आप मुझे ढूंढ सकते हैं 3311063, ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर भी मैसेज कर सकते हैं। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर
1: योर स्पेशल ऑफर
2: हाँ ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ
1: वाह ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है
2: बिल्कुल मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM ओलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता।

0: भाई?
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और बांध रखी है तो उसे कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं बातों के साथ, गानों के साथ, किस्सों के साथ, सिलसिलों के साथ। तो भाई अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी आपके मैसेजेस भेजते हुए, यहाँ पे गाना प्ले करते हुए हम जरा किक स्टार्ट करते हैं शो को। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं बताना चाहूंगा। तो मम्मी से बात हो रही थी मेरी कुछ दिन पहले, तो मम्मी ने बताया था कि केरला की गर्मी को बीट करने के लिए मम्मी ने जो है एक नया ड्रिंक फिगर आउट किया। तो मैंने पूछा क्या है भाई, जरा बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी है, तो हम भी जरा यूज़ कर लें, मम्मी के नुस्खे थोड़े यूज़ कर लें। तो मम्मी ने बोला कि वो ड्रिंक्स आते हैं ना थोड़े स्क्वाश टाइप के, जैसे कि पैशन फ्रूट के आते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के आते हैं, उनके ड्रिंक्स को आप रखिए एकदम फ्रिज में ठंडा करके, उसके साथ सोडा या फिर पानी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मम्मी कह रही थी सोडा, ताकि एक बबलिंग इफेक्ट मिले, एक वो कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला एक फील मिले। तो फिर मैंने पूछा फिर क्या किया आपने, उन्होंने कुछ नहीं, मिक्स कर दिया मैंने, और टेस्ट के अनुसार अगर आपको शुगर डालना है डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। एंड मैंने ट्राई करके देखा, काफ़ी मस्त लगा मुझे। वैसे पैशन फ्रूट का जूस काफ़ी बढ़िया है यार। देखिए आप किसी सुपरमार्केट में जाके चेकआउट कर सकते हैं पैशन फ्रूट का, अगर आपको मिलता है स्क्वाश जैसा तो ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए, इस गर्मी में शायद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। मगर भाई मेरे हिसाब से तो ओजी तो रूह अफजाई है, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
0: रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का वैसे एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने एक ड्रिंक के बारे में बताया था जो मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था समर के टाइम पे, बिल्कुल अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये बात जो है लोगों के दिल पे एक जगह बना गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और बताया है उनके फेवरेट ड्रिंक्स जो बचपन के टाइम पे वो लोग पीते थे और अभी भी कुछ लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मुझे अनिल जी ने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि हेलो सुदेव ब्रो, आपके पैशन फ्रूट ड्रिंक से मुझे याद आया, घर में आम पन्ना बनाते थे हम और अभी तो बहुत टाइम से नहीं बनाया मगर याद आया इसके बारे में, तो डेफिनेटली आवर फैमिली विल यू नो गिव इट अ शॉट करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ मुझे रश्मिका जी ने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि समर में बहुत सारे ड्रिंक्स हमें बहुत अच्छे से रिफ्रेश करते हैं मगर मेरा फेवरेट है मसाला छाछ। आहा यार क्या बात कर दी। सच बताऊं ये मैसेज पढ़ के मुझे खुद छाछ पीने का मन कर रहा है, मैं जुगाड़ करूंगा। उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है और ये काफी बढ़िया मैसेज मुझे लगा, काफी प्यारा मैसेज मुझे लगा। इस एक ड्रिंक के बारे में बहुत पहले भी मैंने सुना था मगर बहुत कम लोगों से सुना था, मगर धीरे धीरे धीरे लोग जो हैं इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं इसके एक इफेक्ट के बारे में, वो है सत्तू ड्रिंक। तो जिन लोगों को नहीं पता सत्तू क्या होता है, बेसिकली रोस्टेड ग्राम फ्लोर जो होता है, चना जो होता है उसको रोस्ट करने के बाद उसको जब हम फ्लोर बना देते हैं, पूरा पीस देते हैं, उसको पानी या फिर बटर मिल्क के साथ मिक्स करके उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल के और ब्लैक सॉल्ट डाल के पीते हैं, ठीक है। ये बहुत एनर्जी भी देता है हमें, साथ ही साथ काफ़ी कूलिंग भी है बॉडी के लिए। तो मुझे मैसेज किया था यहाँ पे दीपक जी ने, दीपक जी ने बोला कि भाई सत्तू ड्रिंक तो फेवरेट है हमारा बचपन से, ताकत भी ठंडक भी करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ये मैसेज पढ़ के मुझे भी ताकत आ गई, ठंडक आ गई, थैंक यू सो मच। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज, ऑलिव रिचार्ज,
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी आपको बोल रही है, वो यही है कि एक अननोन सोर्स से, अननोन नंबर से कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है, उसे शेयर नहीं करना है। वो शायद फिशिंग के लिए, स्कैम के लिए यूज़ किया जा सकता है, आपके पैसे हड़प सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, तो ये सब नहीं करना है। कोई भी अनवेरीफाइड सोर्स से अगर आपको कोई भी लिंक आता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है, डिटेल्स फिल नहीं करने हैं, किसी को भेजना भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना, अपने जहन में बिठा देना। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में एक स्ट्रक्चर रहे, एक ऑर्डर रहे। जो भी कुछ चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें एक टाइमलाइन दिखे कि हाँ यार, ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा हुआ है करके। ये जब होता है तो इंसान भी थोड़ा काम रहता है, आगे क्या करना है उसे पता रहता है। उसके साथ साथ अच्छा सा केयर भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप, ऐसा हो जाता है ना। ये आप कर सकते हैं अपने कार के लिए। बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए, मैं जानता हूं हम सब अपने कार को बहुत सीरियसली लेते हैं। जितना ध्यान हमने अपने कार के लिए दिया है उतना मेंटल हेल्थ पे डाल देते हैं तो शायद दुनिया अलग हो जाती, अलग लेवल पे चली जाती। मगर नहीं, कोई गल नहीं। बात यह है कि आप अपने कार का देखभाल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और प्रॉपर मेंटेनेंस हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। कहां पे? MTC में जाके भाई, वहां पे वैल्वोलिन के जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप उन्हें यूज कर सकते हैं, और उसके डिजिटल पासपोर्ट के साथ आप अपने कार के मेंटेनेंस का एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि कब कब कौन से मेंटेनेंस चेक्स किए गए थे, कौन से प्रोसेस किए गए थे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक नंबर पे कॉल करना है और बात करना है। मगर नंबर पे कॉल करके बात करते वक्त आपको बताना है कि सुदेव ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर नोट कर लीजिए, 7765954, 7765954। इस नंबर पे कॉल कीजिए, बोलिए कि सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए, और बात कीजिए उनके साथ। साथ ही साथ आप वैल्वोलिन MPC के शोरूम्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे जाके उनके प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। हम यूजुअली अपने घर को या फिर अपने खुद के परफ्यूम को एक पॉइंट के बाद ज्यादा स्मेल नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि ब्रेन जो है उस स्मेल से यूज्ड टू हो जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है, ब्रेन क्यों इस स्मेल से यूज्ड टू हो जाता है? वो इसलिए होता है ताकि नए स्मेल जो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, कोई स्मोक या फिर कुछ रॉटिंग हो सकता है, उसे हम जल्दी सेंस कर पाए, जल्दी पकड़ पाए। ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है, और हमें सेफ रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये एक ट्रेट जो है डेवलप किया गया है, डेवलप हो जाता है। सिमिलरली नींद के बारे में भी ऐसा एक सिमिलर ट्रेट है। एक नए एनवायरनमेंट में हमें जल्दी नींद नहीं आएगी या फिर साउंड स्लीप नहीं आएगी जब तक हम यूज टू नहीं होते उस एनवायरनमेंट से, जब तक ब्रेन को पता नहीं लगता या फिर महसूस नहीं होता कि ये जगह मेरे लिए सेफ है। मगर मेरे साथ ये एवोल्यूशनरी ट्रेट काम नहीं करता क्योंकि मैं कहीं भी सो जाता हूँ। और ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो मेरे और मेरे दोस्त का रिश्ता ना बहुत ही प्यारा रिश्ता है, क्योंकि उसका अप्रेजल फॉर्म मैं फिल करता था। जब नया नया उसने जॉब स्टार्ट किया था ट्रिवेंद्रम में, टेक्नो पार्क में वो जॉब करता था, तो जब भी उसका अप्रेजल आता था वो मुझे भेजता था, और या फिर मुझे कॉल पे लेके बोलता था कि भाई ये पूछा है इसमें क्या फिल करूं करके करके, पूरा मैं उसे फिल करके देता था। एंड अभी उसने जो है जॉब चेंज की, वो बैंगलोर चला गया। बैंगलोर में वो अपने एक मैनेजर से मिला, काफ़ी कूल डूड मैनेजर यार, मतलब मैं खुद उसके मैनेजर का फ़ैन हो गया। मतलब मैं तो उनके अंडर काम भी नहीं करता, मगर जिस तरीके से वो बात करता है उस इंसान के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बता रहा था रिसेंटली, वो अपने मैनेजर से बात कर रहा था, और उसके मैनेजर ने उसे बोला, एक चीज़ बोला कि यू शुड नेवर लीड बाय द अथॉरिटी ऑफ योर रैंक, ऑलवेज लीड बाय द अथॉरिटी ऑफ योर हार्ट। तुम लोगों का दिल जीतो, लोग तुम्हारे लिए दिलो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सही बात है। आजकल के वर्क प्लेसेस में कौन ऐसा करता है? दिल जीतने वाले लोग ही दुनिया जीतते हैं भाई। बैलेंस शीट में तुम जीत दिखा सकते हो, मगर उसके आगे अगर तुम्हें बढ़ना है तो लोगों का दिल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इज्जत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वो बता रहा था कि उसका मैनेजर इतने प्यार से, इतने इत्मीनान के साथ उन सबके साथ बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि बंदा बहुत वीक है, उसने एक फ्रेज यूज किया उनके लिए, बोला कि ही इज पोलाइट येट फर्म। और ऐसे में लीडर्स सही में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया चेंजेस लेके आ सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: हाय गाइस, दिस इज जुरीता गांधी। You are listening to me on Radio Olive, Geo Bindas.
2: Radio Olive, I'm number one.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
4: Olive laga aur ho ja recharge.
5: Olive recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप अभी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो मैं कहूंगा सीधा जाइए सलवा रोड में, वहां पे AMTC पे वैल्वोलिन के जेन्युइन प्रोडक्ट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने गाड़ी को मच डिजर्व्ड जो एक केयर है, कंसर्न है, प्यार है, वो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ उनके डिजिटल पासपोर्ट के साथ आप प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं आपकी गाड़ी में कौन से मेंटेनेंस चेक हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ करके। और आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कीजिए और बात कीजिए और बोल देना कि सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर जरा नोट कर लीजिए भाई, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 7765954। फिर से बता रहा हूँ, 7765954। इस नंबर पे कॉल कीजिए, बोलिए कि सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए, रेडियो ऑलिव से कॉल कर रहा हूँ मैं, बताइए क्या करना है। और उसके साथ साथ आप उनके शोरूम को भी विजिट कर सकते हैं जो सलवा रोड में है। अब जाइए AMTC पे, जाइए वैल्वोलिन के प्रोडक्ट्स चेकआउट कीजिए, अब डिसअपॉइंट नहीं होगी। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में।
2: लूनू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई एक बहुत ही बढ़िया बात कतर एयरवेज की तरफ से आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कतर एयरवेज ने अपने करंट प्रमोशनल ऑफर्स के बारे में बताया है, और जो ऑफर्स अवेलेबल है वो है अप टू 20% सेविंग्स प्रीमियम कैबिन्स में, 25% सेविंग्स इकोनॉमी क्लास में, 50% बोनस एवियोस अक्रॉस ऑल कैबिन्स फॉर प्रिविलेज क्लब मेंबर्स। और ये ऑफर्स जो है ये अवेलेबल है 30th जुलाई 2026 के बुकिंग्स तक और 10 दिसंबर 2026 के ट्रैवल डेट तक। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Now listen, get up, that's right.

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा वो भाई गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है। 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे टक टक टक टक करके निकल गए, पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी वक्त निकला। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे इसी सीट पर आएंगे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। तो जाते जाते जाते हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, ऑलिव रिचार्ज में। मैं था आपका मेजबान सुदेव, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

हो गया आपका ऑफिस वाला टाइम जो है वो खत्म और फन वाला टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। 4 घंटे में भी अपने होने वाले पूरे दिन में अगर आपको गर्मी ने और आपके बॉस ने पका दिया और आपका भेजा है गर्म तो कर दो यार।

बात भी मत करना, आपका रेडियो अगर आपकी गाड़ी में है तो आपके फोन में भी रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। क्या पता आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ जाए, घर से बाहर निकलना पड़ जाए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन होगी तो आप मुझे सुनते रहेंगे। आपके पूरे दिन के बारे में बताने के लिए, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस को भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 3311106।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
5: हाय, आई एम राजकुमार राव।
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
7: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ।
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: क्या होता है कि जब भी हम इमोजीज की बात करें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इमोजी जिस मतलब के लिए बनी गई है उसको हम वैसा नहीं समझते, तो अपनी तरफ से जो है वो समझते हैं। सो अगर आप एक इमोजी देखेंगे जिसमें एक नेल पेंट हाथ है और नेल पेंट लग रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये नेल पेंट इमोजी है। सो एक्चुअली ये जो नेल पेंट वाली इमोजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम डूइंग माई नेल्स और वट एवर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनबॉदर्ड, लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं क्रिटिसिज्म नहीं ले रहा हूँ, लाइक टोटली इग्नोर कर रहे हो आप उस चीज को। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये इमोजी यूज कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आई एम डूइंग माई नेल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई जो बोलता है बोलते रहो, करना है करते रहो, लाइक अनबॉदर्ड हूं मैं। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कौन कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है
3: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं
2: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है बल्कि यह जागरूकता है #keepitsustained क्योंकि सुविधाएं कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है
4: कतर जनरल सिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन करामा
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: जिगर फेफड़े की ऊपर क्यों नहीं बनते हैं? आपके साथ देखो यार, अगर आप ड्राइव करते हैं तो लाइसेंस है ना आपके पास? अगर लाइसेंस है तो
1: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
0: यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिमाइंडर जो है वो कतर में रहते हुए आप लोगों को देना चाहूंगी, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए वैलिड जो है लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसके अलावा जो है वो आप गाड़ी चला रहे हो और फिर आपके ऊपर फाइन जो है वो बहुत तगड़ा आ सकता है, 10,000 कतरी रियाल से लेके 50,000 कतरी रियाल, एंड उसके साथ साथ 1 या 3 महीने की जेल भी आपको हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप, हम जैसे रूल्स की हमेशा बात करते हैं कि जिस भी जगह पे आप रहते हो उस जगह की रूल्स जो है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए, है ना? तो कार नहीं चलानी है बिना लाइसेंस के। सिमरन कौर आपके साथ, एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं।
1: दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला।
0: ऑलरेडी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं, यूसुफ जी, दानिश जी, आसमा जी, नेहा जी, स्वप्निल जी, फैजल जी, क्या नाम है इनका, सुग्रा जी, थैंक यू सो मच, फिरोज जी, थैंक यू सो मच, रवन प्रीत जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। अगर आपने अभी तक मुझे गुड इवनिंग का मैसेज नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा यार, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? 3311063 पर आप मुझे गुड इवनिंग के मैसेजेस भेज दो, जिस जिस के नाम आते जाएंगे मैं आप लोगों के नाम इन बिटवीन लेते रहूंगी, लेकिन जब नेम गेम खेलेंगे तब बराबर सबके नाम लूंगी यार।

0: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में।
1: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
2: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas. World's favorite jeweler.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alukas. Joy Alukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
1: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: 26 million reals dream.
1: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
0: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
1: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
0: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon aur mega draw ticket.
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन एएमटीसी, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: आप सुन रहे हैं Qatar ka number one radio station, Radio Olive 106.3 FM.

रहती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: नंबर गाना है ये 6:05 स्टूडियो की घड़ी पे।
1: अल्कोहल।
0: हाँ जी, अब

नंबर आप लोगों के लिए गाने चल रहे हैं। काश मैं ये भी बोल सकती कि बाहर का मौसम भी एक नंबर है। मौसम मौसम का हाल 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 42 डिग्री सेल्सियस था एंड जो लोएस्ट है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 17 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी ओ माय गॉड मतलब 55% है। 6:06 2 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे वापस लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले वेलकम टू द जंगल का तेरा बैजा मेरा बैजा।

0: क्यों थक रहे हो?
1: जेल में तेरा पैसा पैसा पैसा, जेल

0: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
1: लुलु, where the world comes to shop. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਫਿਲਮ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਬੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, आपको बहुत सारे लोगों से प्यार हो सकता है, किससे भी प्यार उससे प्यार है, लेकिन तीन लोगों को किसी एक से प्यार हो सकता है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: सरोज सावित्री एंड संतोष, ये तीनों बहने ओके यूपी की बात है, यूपी इंडिया की बात है। तो छह महीने जो है उनका सोशल मीडिया एक जो कैमरामैन था उसने हैंडल किया, एंड क्या किया कि उन तीनों बहनों ने वो जो सोशल मीडिया उनका संभाल रहा था कैमरामैन उससे ही शादी कर ली। और बहनों का ये कहना है कि उनको जिंदगी में अब बिछड़ना नहीं पड़ेगा, तीनों बहनें जो है वो एक ही घर में रहेंगी। मुझे लगता है कि अब शादी के बाद उनकी एक बात में लड़ाई जो है वो जरूर होने वाली है कि तूने उसकी वीडियो अच्छी एडिट कर दी, मेरी नहीं, मेरी पहले वीडियो एडिट कर, मेरी पहले वीडियो शूट कर, तो ये सारी चीजें होने वाली है। बट यस, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, ठीक है यार, खुश रहो जैसे भी है।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
5: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
4: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
5: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया, बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सिमरन कौर बताओ, नाम बताने की कोई जरूरत है क्या? सिमरन कौर है आपके साथ, चलो बता देती हूँ यार, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है ना यार। सिमरन कौर के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि आप मुझे भेज रहे हो। अगले घंटे हम नेम गेम खेलेंगे।
1: धीरे-धीरे बोल कोई सुना ले, कोई सुना ले।
0: भाई जबरदस्त इवनिंग्स में धीरे धीरे कोई कैसे बोल सकता?

0: तीसरा
1: एक नंबर गाने जो है आप लोगों के लिए चल रहे हैं, और आजकल के एक ट्रेंड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जो कि चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से बहुत सारे काम हो रहे हैं, और अब लोग ना अपने फेस की फोटो जो है खींच के, ओके, जिसमें मेकअप नहीं लगा हुआ, अपने फेस की फोटो खींचने के बाद हर एंगल से अपने फेस की फोटो खींच के वो भेज रहे हैं चैट जीपीटी को, और उनसे पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि मेरी स्किन केयर रूटीन बता दो। भाई साहब, चैट जीपीटी भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो वाकई में स्किन केयर रूटीन जो है वो दे भी रही है। सो आप लोग भी ट्राई करके देखिए कि अपने फेस की फोटो खींच के भेजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में इशू है वो आपको रूटीन बना के देगी। लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी, फेस का मामला है भाई, खुद से भी कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, चैट जीपीटी तो बाद की बात है, डॉक्टर से पूछ लेना। 2-1 एंड गो।

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Socho. अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: एक नंबर गाना यार। मतलब ये नहीं कि आपने टोपी नहीं पहनी है, सो नो कैप का मतलब ये कि जब आप किसी को सच बता रहे होते हैं, लाइक सीरियसली, है ना। और दूसरा एक इमोजी होता है ना कैप वाला, सो आप जो है वो कैप वाला सिर्फ अपने सर पे टोपी के लिए नहीं यूज करते, मतलब उसके लिए वो कैप होता ही नहीं है। सो नो कैप, वो कैप आप भेज देते हो लाइक कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी एक चीज मैं और सच बोलूंगी, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं जो हरियाणा से हैं, उनके लिए
1: यार का नेम चले बेबी गैल मैम चले टॉप का टेम चले।
0: सो ये अगले घंटे का पहला गाना है, जितने भी लोग हरियाणा से मुझे सुन रहे हैं, मेक श्योर कि आप गाना सुनते सुनते एक स्टोरी बनाइए और रेडियो ऑलिव को टैग करना मत भूलिएगा। यो वेलकम
2: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour.

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcor.

बहुत ही प्यारा म्यूजिक, गोविंदा एंड रवीना टंडन, ये जो गाना था किसी डिस्को में जाए एंड अखियों से गोली मारे फ्रॉम दूल्हे राजा, ये एक ही दिन में गाना जो था, मतलब दो गाने जो थे वो शूट हुए थे। एंड बात करें अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में थे, एंड ये लाल बादशाह जो अमिताभ बच्चन की जो थी, और ये वाली फिल्म लाल बादशाह ये लीडिंग रोल में उनकी लास्ट जो थी वो फिल्म थी। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब जो सेंट्रल रोल थे वो प्ले करने स्टार्ट कर दिए थे, लाइक मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म के बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी बातें जो है वो बताने वाली हूँ, लेकिन गाने भी आने वाले हैं।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं. सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी.
5: Hi, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया, बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
11: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: ट्रिविया में बात कर रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के बारे में। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। जो इसमें राम्या का जो रोल था ना, वो जूही चावला को पहले ऑफर किया गया था। एंड ये जो फिल्म थी, बिगेस्ट हिट जो थी वो ओपनिंग जो थी इसकी रही थी 1998 में। एंड कुछ कुछ होता है और यह शायद ये बड़े मियां छोटे मियां जो थे वो एक ही टाइम पे रिलीज हुई थी, सेम डे रिलीज हुई थी। एंड ये फिल्म ने काफी ज्यादा मतलब बढ़िया जो था वो बिजनेस किया था इसीलिए। और अमिताभ बच्चन की बात करें सो उनका कमबैक था ये 5 साल बाद, 1992 से लेके 1997 तक जो था उनका ब्रेक था। एंड गोविंदा ने पहले करिश्मा कपूर को, जो रोल था रवीना टंडन का, करिश्मा कपूर को रिकमेंड किया था, पर उसने राजा हिंदुस्तानी ब्लॉकबस्टर हो गई थी उसकी वजह से उसने मतलब इस रोल को करने से मना कर दिया था। एंड एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी, जो कि मैंने कभी शायद सोची भी नहीं थी, कि माधुरी दीक्षित एंड अमिताभ बच्चन ने कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं किया। तो सिर्फ एक सिंगल टाइम था जब एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था माधुरी दीक्षित का अमिताभ बच्चन के साथ, वही मखना वाले गाने पे। सो या ये था और डेविड धवन की फिल्म में पहली बार जो था वो अमिताभ बच्चन ने काम किया था। तो फिल्म से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं, करते जाऊंगी बताते जाऊंगी, लेकिन गाने कौन सुनाएगा यार। फिर
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
3: ओके रेडी, पुचन कैचन पुचन कैचन।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: आज हम बात करने वाले एक ऐसी फीलिंग के बारे में जो कि आपको भी आती है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: हम लाइफ में जो है वो जो बड़े हो जाते हैं, जब हमारी एडल्टिंग हो जाती है, हम बड़े बड़े फैसले लेते हैं अपनी लाइफ में। कुछ फैसले जब हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि यार ये फैसला करना है, राइट? नहीं, ये तो करना ही करना है। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं नहीं ये नहीं करना, तो बहुत श्योर होते हैं। सबसे ज़्यादा वो फैसले पता कौन से दुखते हैं, जहाँ पर वो चीज़ करनी ज़रूरी है लेकिन आपका मन जो है वो नहीं मान रहा है। अगर आपका मन जो है वो नहीं मान रहा है तो आप उसको नहीं कर, मतलब ये नहीं कर सकते कि नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ जो है वो करनी भी ज़रूरी है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी फैसला हो सकता है। सबसे ज़्यादा जहर लगती है मुझे ये वाली सिचुएशन यहाँ पर, जहाँ पर आपका दिल जो है वो मना कर रहा है बट आप दिल की नहीं सुन सकते क्योंकि दिमाग कह रहा है कि अगर तुमने ये चीज़ के लिए मना किया तो गलत हो जाएगा। सो भाई साहब, वो सिचुएशन बड़ी गंदी होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए मैं कुछ नहीं बता सकती, खुद ही नहीं बता सकती, कोई नहीं एक्चुअली बता सकता कुछ भी। वापस लड़के नेम गेम खेल रही हूँ, तैयार हो जाइए।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे, जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते, पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई

मिनट 30 सेकंड स्टूडियो की घड़ी बजेगी अब बिना देर लगाए। कि आपका नाम मैं अभी बोल दूं रेडियो पे तो आपको अभी अपना नाम मुझे लिख के भेजना होगा, व्हाट्सएप करना होगा। मैं आपको अभी मेरा नंबर बता देती हूँ व्हाट्सएप का, 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दीजिए। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। चलिए फटाफट से अच्छे बच्चे बन के अपना नाम लिख दो। नो हाई नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, कोई वॉइस नोट नहीं भेजना है, ठीक है। चलिए नाम पढ़ने स्टार्ट कर रही हूँ। आसमा, वाजिद, उमर, तरार, प्रिंसन, पाली, अबरार, सजाद, अदील, आलम, मोहम्मद, यूसुफ, दानिश, नेहा, स्वप्निल, वाजी, फैजल, मनहत जी, सुग्रा जी, फिरोज जी, रमन जी। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे भेजो। देखो यार, हाई हेलो नहीं करना है प्लीज़ मुझे, 3311063 पे नाम भेजो। हमद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सबिका जी, फकीहा जी, नारायण जी, सोनू जी, साजिद, सीमा, अलरिदा, मोहम्मद ताहिर, राजकुमार, नैनदीप, वत्सल, जुनेद, लतीफुल्ला, दिनथे, आई होप ये आपका नाम मैं सही बोल रही हूँ, महमूद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। पाली जी, थैंक यू सो मच। शेरियार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। महमूद जी, आमिर तुफेल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अली रिदा सीमा, ये आप लोगों के नाम भी मैंने बोल दिए हैं। करण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। नारायण जी, सोनू जी, थैंक यू सो मच। ताहिर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करीम जी, टीपू जी, अनीस जी, थैंक यू सो मच। मुजम्मल तार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जल्दी करो, अगला गाना शुरू हो रहा है। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख दो। कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। चीमा साहब जी, थैंक यू सो मच। साजिद शेख जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड अदील भट्ट जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स कलवानी जी, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों ने अपने नाम सुन लिए, अब आप थैंक यू लिख दो अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के। फिरोज जी, आपका नाम भी देख लिया मैंने। उमेर जी, आपका नाम भी देख लिया। अब रुक जाओ दोस्तों,

एक नंबर, बहुत दिनों बाद सुन रही है गाना। सुनियो कितना देखिए, हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े ना।

0: बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, लेकिन अब आपसे थोड़ा काम है, दिमाग लगाइए।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: सो बताओ ये कौन सा गाना है, एक चुटकी सुनाने वाली हूँ। चाहिए तो रिकॉर्डर ऑन कर लो, तो 4-5 बार आप सुन सकते हो जब तक आपको गाना ना समझ लगे। वैसे ये गाना ना समझ लगे ऐसा हो नहीं सकता।

बताओ ये कौन सा गाना है, बताने के लिए या तो गा सकते हैं आप या फिर आप ऐसे बोल के बता सकते हैं, लिखना नहीं है आपको। वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए एकदम फुल ऑन सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ और गाना बताइए और भेज दीजिए 3311106 पर। थोड़ा सा एक बार और

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: प्यारा गाना है ना यार.
1: बहुत बढ़िया.
0: और एक चुटकी वर्ड सॉन्ग मैंने आपको सुनाया था.

0: और मैं हमेशा आपसे एक चीज बोलती हूँ कि देखो, अगर जिसको जवाब आता है वो तो जवाब भेजेगा भेजेगा, जिसको नहीं आता तो आप खुले में बोल दो कि भाई नहीं समझ लग रहा है यार, मेरे को बता दो कि सिमरन यार ये क्या है यार, बता दो।
1: सिमरन जी थोड़ा बता दे, चीटिंग कर ले, मुझे नहीं पता चल रहा ये कौन सा है।
0: कोई बात नहीं दोस्त, बता देंगे।
2: सिमरन हाय, गुड इवनिंग।
0: मेरी गुड इवनिंग।
2: सॉन्ग यू प्लेड इज कैसे मुझे तुम मिल गई,
0: ओके,
2: द मूवी गजनी।
0: ओके
2: ओके, थैंक यू।
0: ओके, तो आप लोगों के जवाब।
3: सिमरन
0: हाय,
3: मेरा नाम फारूक है और ये गाना है तुम हो आस मेरे साथ मेरे हो तुम यू। रॉकस्टार फिल्म एंड यू बिंदास।
0: थैंक यू सो मच, बिल्कुल करेक्ट है जी, रॉकस्टार फिल्म से तुम हो पास मेरे। बस यार ये गाना और ये फिल्म अलग ही लेवल की है। ये गाना बस थोड़ी देर में आपके लिए प्ले करूंगी, लेकिन इस गाने के साथ साथ

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जुबिन नौटियाला है, बड़ा प्यारा गाना यार ये। स्टूडियो की घड़ी में होने में 10 सेकंड रह गए हैं, मेरा मैथ्स देखा आपने कितना तगड़ा हो गया। चलो ठीक है जी, फिर कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात, लेकिन एक गाना ओए होए होए आई लाइक इट यार।
1: तो किसी रेल सी गुजरती है,
0: मैं किसी पुल सा थरथराता हूं, और आवारा बन 2 आ रही है और ये गाना अरिजीत ने गाया। वो नहीं पता है, लेकिन अभी के लिए ये रात आपकी अच्छी हो, ओवरथिंकिंग मत करिएगा उसके लिए। खांदे बिंदे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सकिलो।

आज रात एक कहानी उस इंसान की जिसे दुनिया आज शहंशाह के नाम से जानती है, लेकिन हर शहंशाह की कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, वेरी गुड इवनिंग। और आज शुरू करते हैं मिडनाइट लाउंज विद लॉट ऑफ न्यू मोटिवेशन। सो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। उनके करियर के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे, उनकी कई फिल्में चली ही नहीं। स्ट्रगल इतना था कि लोग कहते थे उनकी ना हाइट ज़्यादा है, आवाज़ अलग है और वो हीरो मटेरियल है ही नहीं। एक इंसिडेंट बहुत कम लोग जानते हैं जब उनकी एक अर्ली फिल्म एक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपनी फीस वापस करने की बात कही। उनका मानना था कि अगर प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ है और मैं उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। सोचिए, उस वक्त वो सुपरस्टार नहीं थे, उनके पास नाम भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी रेपुटेशन को अपनी सैलरी से बड़ा माना। और शायद इसी वजह से जब सक्सेस आई तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन गए। कभी कभी करियर टैलेंट से नहीं बल्कि कैरेक्टर से बनता है। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि यार लाइफ में इतना डिसअपॉइंट होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और हम एक छोटा सा बिजनेस ओपन करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार ये तो चल ही नहीं रहा, पर मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर आपको अमिताभ बच्चन की सिर्फ एक फिल्म हमेशा के लिए देखनी हो तो वो कौन सी होगी? बाय द वे, माय नंबर इज सेम 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज।

0: ये है मिड नाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

एवरी टाइम वेन एवर आई एम हेयर मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए सुपर हिट गाने लेकर आऊँ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज़ मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिड नाइट लाउंज. भाई कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस आने का मन ही नहीं करता. बस आज वही एक दिन था. अभी बस कल ही नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है. कल ही मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें की हैं. बट वेन इट कम्स कि यार आज ऑफिस जाना है तो ऐसा लगता है कि यार फिर से वही रूटीन. पर जैसे ही मैं आपसे बात करने के लिए अपना माइक ऑन करती हूँ मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है. सोचिए एक छोटी सी लड़की की अलमारी, ना कोई लॉक, ना कोई कैमरा, ना कोई लाइब्रेरियन, बस उसमें रखी हुई एक किताब और उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड, टेक अ बुक लीव अ बुक. मतलब दुनिया की कई सारे देशों में ऐसे लिटिल फ्री लाइब्रेरीज जो हैं वो मिलते हैं. जर्मनी, नीदरलैंड्स, अमेरिका और बहुत सी जगहों पर लोग अपनी फेवरेट किताब रख देते हैं ताकि कोई अनजान इंसान उसे पढ़ सके. और हम इंडियंस हर एक किताब को संभाल के रखते हैं. आई डोंट नो व्हाई. यू नो सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई चेक नहीं करता कि आपने किताब वापस की है या नहीं. पूरी सिस्टम एक चीज़ पर चलती है, विच इज़ ट्रस्ट. कितनी अजीब सी बात है ना, आज के ज़माने में हम पासवर्ड पर भरोसा करते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो आज भी इंसानों पर ही भरोसा करते हैं. शायद इसीलिए किताब सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वो लोगों को जोड़ती भी है. और आप मुझे बताइए, अगर आप अपनी एक फेवरेट किताब किसी अननोन इंसान के लिए छोड़ सकते तो वो कौन सी होती. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM और नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you और शो का नाम yes of course Midnight Lounge. आज रात एक ऐसी कहानी जो शायद आपने सोशल मीडिया पर जरूर पढ़ी होगी. नासा ने स्पेस में लिखने के लिए मिलियन डॉलर्स खर्चा करके पेन बनाया और रशियंस ने बस पेंसिल यूज कर ली. सुनने में कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है. शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स और जो कॉस्मोनॉट्स थे दोनों ही पेंसिल यूज करते थे, लेकिन स्पेस में पेंसिल की छोटी सी ग्राफिट डस्ट ना हवा में तैर सकती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंच सकता था और लकड़ी भी फायर रिस्क बन सकती थी. इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कि प्रेशराइज्ड स्पेस पेन बनाया जाए जो ग्रेविटी के बिना भी लिख सके, और बाद में अमेरिका और रशिया दोनों ने उसका इस्तेमाल किया. कभी कभी वायरल स्टोरीज ना हमें सिर्फ आधा सच बताती हैं और असली कहानी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. When I see something on social media, तो मैं हमेशा उसको क्रॉस चेक करती हूँ. I try कि भाई देखा जाए कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है. So ऐसी कौन सी बात थी जो आप सालों तक सच मानते थे और बाद में पता चला कि यार वो तो सिर्फ एक मिथ ही थी. 3311106 is my number. You are listening Radio Olive और ये है Midnight Lounge.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. यू नो कभी कभी एक इंसान आता है और सिर्फ अपना करियर नहीं पूरी इंडस्ट्री बदल देता है. मैं बात कर रही हूँ 1992 में एक फिल्म आई थी रोजा, और उसके साथ आया एक नया नाम एआर रहमान सर. उस वक्त बॉलीवुड में एक अलग ही म्यूजिक का दौर था, लेकिन रहमान सर ने इलेक्ट्रॉनिक साउंड, इंडियन क्लासिक, फोक और वर्ल्ड म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से मिलाया कि लोग हैरान रह गए. और सबसे खास बात, उन्होंने हमें सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं बल्कि म्यूजिक को फील करना सिखा दिया था. सो बेसिकली आज मैं ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों की बात कर रही हूँ, और गाने के बीच की खामोशी भी उनके कंपोजिशन का हिस्सा बन गई थी. अगर गाना ना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, किसी गाने में अगर थोड़ी देर कुछ म्यूजिक, कोई आवाज़ ना आए, तो ऐसा लगता है कि ये डेड एयर कहाँ से आ गई. पर उनकी वो खामोशी भी लोगों को पसंद आ रही थी, और आज इतने साल बाद भी

दिल से रे, तू ही रे, कुन फाया कुन, या फिर लुका छुपी सुनते ही ना दिल के एक अलग ही सफ़र पर निकल पड़ता है हमारा दिल। तो कुछ म्यूजिशियंस ना गाने नहीं बनाते, सिर्फ कुछ यादें बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि AR रहमान का वो कौन सा गाना है जो सुनते ही आपकी दुनिया कुछ देर के लिए रुक सी जाती है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। दिस इज मी मुस्कान विद यू, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

Hi, welcome back. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM. आई वाज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि भाई आपने कौन सी ऐसी अधूरी कहानियाँ सुनी और लोग मुझे अलग अलग मिथ वाली कहानियाँ बताने लग गए जो उन्होंने सोशल मीडिया पर देखी थी. सो यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स नाउ. आज एक कहानी एक बेस्ट सेलर की नहीं है, एक 13 साल की लड़की की है. उसका नाम था एन फ्रैंक. जब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो रही थी अलग अलग जगहों पर, एन अपने फैमिली के साथ एक छोटी सी जगह पर रह रही थी. बाहर अलग अलग चीज़ें चल रही थी और अंदर थी एक अलग खामोशी. उसमें अपनी तन्हाई, अपने सपने और अपने डर को एक डायरी में लिखना शुरू किया. उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वही डायरी दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक होगी. एन की डायरी हमें एक बात सिखाती है, कभी कभी सबसे पावरफुल आवाज़ वो होती है जो सिर्फ सच लिखती है. सो आई वॉज थिंकिंग कि कितनी सारी ऐसी किताबें हैं जो लोगों ने अपनी रियल स्टोरीज के साथ लिखी हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लिखी हैं, और आप उन किताबों के साथ एक अलग कनेक्शन फील करते हैं. आई एम श्योर आपके पास भी एक ऐसी किताब होगी जो आपको बहुत पसंद आई होगी. मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी किताब जो मैंने पढ़ना शुरू की थी. तो मैं आई वॉज जस्ट कम्प्लीटेड माई 12th और मैं फर्स्ट ईयर में आई, तब मुझे किताबें पढ़ने का शौक आया. तब मैंने चेतन भगत की किताबों से अपना बुक जर्नी जो है स्टार्ट की. इट वॉज़ वेरी लाइट बुक्स, लव स्टोरीज थी, छोटी छोटी कहानियाँ थी, छोटे छोटे किस्से थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया. अगर आप अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक दिन डायरी में हमेशा के लिए लिखना चाहोगे तो वो कौन सा होगा, या फिर कोई ऐसी किताब जो आपको लगता है कि यार ये आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, तो वो कौन सी है? 3311063 इज़ माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज.

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. And जब मैं आज ऑफिस के लिए आ रही थी तो आई वॉज वेरी अपसेट. मुझे लग रहा था कि यार मुझे ना एक छुट्टी चाहिए. आई डोंट नो वाई, जबकि आई वॉज फुली फाइन, बट पता नहीं क्यों. फिर मैं जब यहाँ पे आ गई और मैंने आपसे बातें करना शुरू किया तो मेरा मन लग गया. सो कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कभी कभी ना चीज़ें स्टार्ट करने का मन नहीं करता, लेकिन बाद में यू फील कि अच्छा हुआ मैं आ गई और मैंने यहाँ पे सबसे मिल लिया. सो ये एक छोटा छोटा जो लाइफ में डाउट आता है ना, उसको हमेशा यू नो आपको क्लियर कर लेना चाहिए. इसी के साथ आज मैं बहुत सारी कहानियाँ लेकर आई हूँ. और अगली कहानी है कि कभी कॉफ़ी ऑर्डर करते टाइम ना आपने सोचा है कि यार कप पर आपका नाम क्यों लिखा जाता है जब आप कई सारे ऐसे ब्रांड्स देखते हो? सिर्फ इसीलिए ताकि ऑर्डर मिक्स ना हो? नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी ही कहानी तो नहीं हो सकती. मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है तो एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है. इसी छोटी सी बात ने कॉफ़ी को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बना दिया था. सो हम सबको अपना नाम सुनना अच्छा लगता है जब आप किसी कैफ़े में जाते हो या कहीं पर भी. शायद इसीलिए दुनिया की हर लैंग्वेज में सबसे खूबसूरत आवाज़ अक्सर इंसान का अपना नाम ही होती है. सो यू टेल मी, आपको किस नाम से बुलाया जाना सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? क्यों आपके लिए वो यू नो एक नाम जो है वो इतना स्पेशल है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311106. Stay tuned, Jio. Bindaas.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: होम्स आर अस।

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you और शो का नाम Midnight Lounge. So, आज की कहानी इतनी सारी लेकर मैं आई थी और ये एक अगली कहानी थोड़ी सी अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत. So, अमेरिका और जॉर्जिया स्टेट में एक मशहूर पेड़ है जिसे लोग कहते हैं द ट्री दैट ओन्स इट्सेल्फ. लोकल कहानी के अकॉर्डिंग उस पेड़ की असली जो ओनर है उसने अपनी विल में लिखा था कि ये पेड़ और उसके आसपास की ज़मीन की जो है वो उस पेड़ की ही होगी. अब चाहे अगर लॉ में देखा जाए उस तौर पर इस बात पर बहस होती रही, लेकिन उस शहर में लोग आज भी उस पेड़ को उसी इज्जत के साथ देखते हैं क्योंकि कभी कभी सच से ज़्यादा खूबसूरत कहानियाँ होती हैं. सो मुझे लगता है कि एक अच्छी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है और शायद इसीलिए वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, शहर की पूरी पहचान बन गया. सो आज के सवाल में आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपके बचपन का कोई एक पेड़ या जगह आज भी वैसे ही मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. मैं सच बता रही हूँ कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो आज भी वैसा ही है, चाहे कोई उधर आसपास रहे ना रहे, लेकिन वो पेड़ ज़रूर रहता है, बहुत पुराना और सालों पुराना पेड़. सो आप मुझे बताइए कि ऐसे ही कोई आपके घर के आसपास की कहानी है. सो नंबर इज़ देयर 3311063. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिड नाइट लाउंज,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और यहाँ पर बात कर रहे थे मिडनाइट लाउंज में अलग अलग कहानियों की. सो दिस इज द टाइम जब मुझे आपसे कहना पड़ता है कि शो खत्म करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. आपने शायद सुना होगा कि एक बार चार्ली चैपलिन खुद अपने ही लुक अलाइक कॉन्टेस्ट में गए थे और जीत नहीं पाए. इस कहानी की हिस्टोरिकल डिटेल्स पर आज भी अलग अलग ओपिनियंस हैं, लेकिन लोगों को ये कहानी इतनी पसंद क्यों आई? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत प्यारी बात छुपी है. दुनिया अक्सर असली इंसान से ज्यादा उसकी कॉपी को पहचान लेती है, लेकिन असली पहचान कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े या कभी चेहरे से नहीं बनती. वो बनती है अपनी ओरिजिनलिटी से, और शायद इसीलिए चार्ली चैपलिन आज भी याद है, कॉन्टेस्ट की वजह से नहीं, अपनी मुस्कान, अपनी कहानियों की वजह से. सो इसी के साथ आई हैव टू से कि अगर लोग आपकी जिंदगी भर सिर्फ एक बात के लिए याद रखें तो आप क्या चाहोगे, वो कौन सी बात हो, जरूर बताएगा. जाते जाते नंबर है 3311063, आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप. लेकिन मेरे हो गया है जाने का टाइम. कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें.
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Chandni

106.3 FM, Gio Bendaz.

Olive 106.3 FM Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।